0: 신신들당은서브인샤만을띠터마반다
1: 이고로
0: 키키반자가라이시더하오피시얼하는자키점사마기허둥시플라스틱더이익품차만서브인이끌어먹자자알버버그수고비다하고어버서나신시키마반자
2: बेसी शहर सेरा बाजार में रहे को कामच्या फर्नीचर एंड फर्निशिंग सेंटर में घराइची तथा किचन फर्नीचर का सामान हरू बॉक्स पलंग सोफा लो बेड दराज किचन रैक आदि पाइन्छ। फर्निशिंग का सामान हरू कारपेट पर्दा सिरक डसना सिरानी आदि पाइनु का साथ ही किचन लाई आवश्यक पर्ने संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक किचन सामग्री हरू राइस कुकर पंखा हीटर मिक्सर आदि पाइन्छ। साथ ही नफुटने प्लास्टिक का सामान हरू बाटा बाल्टी कुर्सी टेबल आदि ग्यारेन्टी का साथ पाइन्छ।
3: नोट, कामाक्षा फर्नीचर मा दसैं तिहार तथा अन्य चाड़ पर्व र शुभ विवाह मा सामान विशेष छूट मा पाइनुका साथै प्रत्येक दिन पनि सामान मा विशेष छूट रहेको छ।
2: कामाक्षा फर्नीचर एंड फर्निशिंग सेंटर बेसी शहर नगरपालिका 8 तेरा बजार कारागार अगाडि राधाकृष्ण चौक लमजुङ प्रोप्राइटर यज्ञराज सिधाई र रूपा सिधाई। सम्पर्क फोन नम्बर 066-527-727 मोबाइल नम्बर 98-465-44-264 र

अवश्य मधुमेह रोग व्यवस्थापन तथा आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श का लागि पनि हिमाल मेडिकल हल तपाईको साथमा छ। प्रोपाइटर लोक बहादुर हिमाल, हिमाल मेडिकल हल, बेसी शहर नगरपालिका साथ, मनाङ्गे चौतारा, लमजुङ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98460 98911।

से गई गरी तो पहले पने गाँव खाने प्रश्न को उत्तर मिलाओ न सक मुझे हमी समझ नहीं पड़ने नंबर एक शून्य से एकसठी पांच एक सौ तिरासी में कल संपर्क कर सकू ये बेला सांगीतिक कोशिली।

0: 시절 버려져 2.3마리 버림신 플라스틱 일렉트로닉 사만 서비스 벌어버려져 잘 벌어버 그 수고비바하고 어버서나 미시 축하 바인자
1: बेसी शहर सेरा बजार में रहे को कामच्य फर्नीचर एंड फर्निशिंग सेंटर में घराइची तथा ऑफिशियल फर्नीचर का सामान हरू बॉक्स सलंग सोफा लो बेड दराज किचन रैक आदि पाइन फर्निशिंग का सामान हरू कारपेट पर्दा सिरक डसना सिरानी आदि पाइन का साथ ही किचन लाई आवश्यक पड़ने संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक किचन सामग्री राइस कुकर पंखा हीटर मिक्सर आदि पाइन साथ ही नफुटने प्लास्टिक का सामान बाटा बाल्टी टेबल आदि ग्यारेन्टी का साथ पाइन्छ
2: नोट कामाक्षा फर्निचर में दसैं तिहार तथा अन्य चाड़ पर्व र शुभ विवाह में सामान विशेष छूट में पाइन का साथ ही प्रत्येक दिन पनि सामान में विशेष छूट रहेको छ
1: कामाक्षा फर्निचर एंड फर्निशिंग सेंटर बेची शहर नगरपालिका 8 सेरा बजार कारागार अगाड़ी राधाकृष्ण चौक लमचुंग प्रोपाइटर यज्ञराज सिधाई र रूपा सिधाई संपर्क फोन नंबर 0665207727 मोबाइल नंबर 98465424 र 98467915